फूल हमें सिखाए, फूल हमें बिना कुछ कहे जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे जाते हैं। खिलना है तो परिस्थितियों का इंतजार मत करो, धूप में भी खिलते हैं और बारिश के बाद भी। हम भी जीवन की परिस्थितियों से शिकायत करने के बजाय उनमें मुस्काना या मुस्कुरा कर रहना सीख सकते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। समय बड़ा शिक्षक है। बीता हुआ कल हमें अनुभव देता है और आने वाला कल हमें उम्मीद। जो समय आज हमारे हाथ में है वही हमारी असली पूंजी है। इसलिए आज का दिन किसी शिकायत में नहीं, किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उनके साथ किया गया अच्छा काम हमेशा याद रहेगा।

पुरवाई की ठंडी हवा जैसे प्रकृति का संदेश लेकर आती है, उठो जागो और जीवन को नए उत्साह से अपनाओ। भोर सुहानी की इस प्यारी सुबह में बस इतना याद रखिए, हर सूर्योदय अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज की कहानी हम अपने उत्साह, अपने कर्म और अपनी मुस्कान में से लिख सकते हैं। तो मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और इस खूबसूरत सुबह को अपने नाम कर लीजिए। और मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, बस यही कहूँगी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో మరియు ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే వైష్ణవి. नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं. तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई. माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया. भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है. काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं. ये नंबर है 9779851316807 और 9779101705000. चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है. पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है. नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं. वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे. इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है. गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की. श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है. नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता.
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है. सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना.
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है.
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है. चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ. जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा.
1: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है. कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे. राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा. सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है. उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है. वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल

ಹೈದರಾಬಾದ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। वेल दोस्तों, फैशन जो है सबको नो स्टाइलिश ही नहीं बनाता, बल्कि कई बार हैप्पी भी फील करवाता है, क्योंकि फैशन हम सबके लिए अलग अलग मीनिंग रखता है ना। किसी के लिए फैशन का मतलब हो सकता है नए लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना, किसी के लिए हो सकते हैं कंफर्टेबल क्लोथ्स, और वही किसी के लिए बस वही पहनो जिसमें आपको खुद के बारे में अच्छा फील हो। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ आउटफिट्स पहनकर हमारा मूड जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है? कभी कोई फेवरेट ड्रेस हो जाए, या कोई ब्राइट कलर, या फिर वो एक आउटफिट जिसे पहनकर हम मिरर में खुद को देख के और बोलते हैं लाइक ओके टुडे आई लुक वेरी गुड। सो वेल, इसी थॉट से जुड़ा हुआ है आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये इंटरेस्टिंग फैशन ट्रेंड, जिसका नाम है डोपामाइन ड्रेसिंग। तो डोपामाइन ड्रेसिंग होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9। तो ये गाना सुनिए और वापस हमारे साथ जुड़ जाइए। स्टे ट्यून्ड।

हम बात कर रहे हैं इस गाने से पहले डोपामाइन ड्रेसिंग के बारे में. तो डोपामाइन ड्रेसिंग होता क्या है? अगर सरल वर्ड्स में इसके बारे में बोले तो डोपामाइन ड्रेसिंग का मतलब होता है ऐसे कपड़े पहनना जो आपको हैप्पी, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील कराए. इस ट्रेंड में ब्राइट कलर्स, एक्सप्रेसिव आउटफिट्स और थोड़ी बोल्ड स्टाइलिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है. यानी आप क्या पहन रहे हैं वो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अच्छा फील करने के लिए. और यहाँ पर फैशन का एक इंटरेस्टिंग कनेक्शंस इमोशंस के साथ भी बना है. डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेजर, मोटिवेशन और रिवॉर्ड जैसी फीलिंग से एसोसिएटेड है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लारिफिकेशन, क्लोथ्स पहनने से डायरेक्टली डोपामिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं ऐसा साइंटिफिकली इस्टेब्लिश नहीं है. लेकिन बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब वो अपने फेवरेट कलर्स या फेवरेट आउटफिट पहनते हैं तो उनका मूड और कॉन्फिडेंस जो है वो बेटर फील

होता है। एंड ऑनेस्टली हम सब ने इसका थोड़ा एक्सपीरियंस तो किया ही है, कभी मॉर्निंग में मूड बिल्कुल ऑफ है, हेयर भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, और फिर आप एक फेवरेट आउटफिट अपना पहन लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिरर के सामने वो अपने आप को देखना, एंड सडनली वी फील लाइक चलो अब डे हैंडल हम कर लेंगे। वेल दैट्स द पावर ऑफ ड्रेसिंग या अपना फेवरेट कपड़े पहनने का। वेल, इसके बारे में हम और बातचीत करते रहेंगे बट कमिंग अप।

राइट, दैट वॉज फ्रॉम द मूवी हिंदी मीडियम. तो हम बात कर रहे हैं डोपामिन रेसिंग के बारे में और इस ट्रेंड की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी. वेल, सबसे पहली वजह ये है कि पीपल आर बिकमिंग मोर कम्फर्टेबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. फैशन के कुछ पुराने रूल्स थे, राइट, कि इस कलर को इस कलर के साथ मत पहनो, ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता, ये आउटफिट नो एज के अकॉर्डिंग नहीं लगता. लेकिन डोपामिन रेसिंग कहती है अगर आपको पसंद है तो वेयर इट. ऑफकोर्स स्टाइल करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है. आप कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रिंट्स ट्राई कर सकते हैं, टेक्सचर्स मिक्स कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को क्लोथ्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो कॉम्बिनेशन जो भी हो, कॉन्फिडेंस आप थोड़ा अपने स्टाइल के साथ मैच कर लीजिए एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक.

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLOకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: FM Rainbow 101.9. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, जहां पे हम बात कर रहे थे डोपामाइन ड्रेसिंग के बारे में कि कैसे अपना मनपसंदीदा कपड़े हम जब पहनते हैं तो हमारा मूड जो है वो ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाता है, हमारा अच्छा मूड और एलिवेट हो जाता है एंड फील यू नो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस या तो फील गुडनेस वाला जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा ये नहीं है कि आप इस कलर को इस कलर के साथ नहीं पहन सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये ड्रेस जो है पसंद आता है या कॉम्बिनेशन आपको पसंद आता है तो डोपामाइन ड्रेसिंग यही कहता है कि अगर आपको पसंद है तो आप इसे बिल्कुल पहन सकते हैं. और ब्राइट कलर्स के साथ कई बार क्या होता है, डोपामाइन ड्रेसिंग की सबसे रिकॉग्नाइजेबल चीज़ है ब्राइट कलर्स. इनमें हम अगर देखें तो येलो हो सकता है, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन या ब्लू. ये कलर्स जो है आउटफिट्स को इंस्टेंटली लाइवली बना देते हैं. और इंटरेस्टिंगली रीसेंट ईयर्स में मिनिमल और म्यूटेड क्वाइट लग्जरी स्टाइल के साथ बोल्ड कलर्स और एक्सप्रेसिव फैशन ने भी काफ़ी अटेंशन गेन की है. तो अगर आप नॉर्मली सिर्फ ब्लैक, वाइट या बेज पहनते हैं, एक दिन थोड़ा येलो ट्राई कीजिए या ब्लू या पिंक. वेल पूरा आउटफिट आपको कलरफुल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, राइट? जैसे कि शायद एक ब्राइट हैंड बैग या कलरफुल शूज, स्टेटमेंट ज्वेलरी या एक वाइब्रेंट स्कार्फ. क्योंकि कभी कभार जो है एक स्मॉल पॉपअप कलर जो है वो पूरे आउटफिट को ही ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल है.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। और हम बात कर रहे हैं डोपामाइन रेसिंग के बारे में, राइट? तो फैशन दूसरों के लिए या खुद के लिए अगर हम बात करें तो शायद डोपामाइन रेसिंग का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया यही है कि ड्रेस फॉर योरसेल्फ। हम अक्सर कपड़े चूज़ करते वक्त ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसमें अच्छा क्या लगेगा या ये ट्रेंड में है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए, क्या मुझे इसमें अच्छा फील हो रहा है? बिकॉज कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस सिंपल ये होता है कि दिस फील्स लाइक मी, राइट? तो आपकी अगर आपको डोपामिन रेस्टिंग अपने डेली लाइफ में कैसे ऐड करना है ये अगर सोच रहे हो, तो काफ़ी सिंपल बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पूरी वार्डरोब चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट क्योंकि हमें शुरुआत जो है वो छोटी कदम के साथ कर सकते हैं, राइट? आपकी फेवरेट कलर्स क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में, या फिर उन्हें एवरीडे आउटफिट्स में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक कलरफुल एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं ब्राइट शूज़ में, राइट? तो वेयर बिकॉज यू लाइक इट, प्रिंट्स टेक्सचर्स मिक्स कर सकते हैं आप, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट कंफर्ट को मत इग्नोर कीजिए, राइट? सो अगली टाइम जब आप अपनी वार्डरोब के सामने खड़े होकर सोचें कि आज क्या पहना जाए, मे बी इट्स इन ट्रेंड या नहीं, या मे बी इट इज़ सोशल मीडिया फ्रेंडली और नॉट, बस अपनी वार्डरोब देखिए और पूछिए आज मुझे किस आउटफिट में हैप्पी फील होगा। बिकॉज फैशन इजंट अबाउट ऑलवेज फॉलोइंग द रूल्स, समटाइम्स इट्स अबाउट ब्रेकिंग अ फ्यू एंड बीइंग योरसेल्फ। तो पहनिए वो कलर जो आपको खुश रखता है, और वो आउटफिट जो कॉन्फिडेंस देता है, और वो स्टाइल जो कहता है दिस इज मी। और अब फैशन से थोड़ा म्यूजिक की तरफ हम मूव करते हैं, तो लेट्स हियर अनदर सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

गलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, वो तो जादू है गॉड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। वेल, 3 o'clock में 11:55 होने ही वाला है, तो अब से कुछ ही देर में 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश, और उसके बाद हम नमस्ते हेलो आदाब के साथ वापस हाजिर हो जाएंगे 12:10 में। तब तक के लिए सुनते रहिए एफ एम रेनबो 101.9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और

0: आपदा राहत सामग्री दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, said under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The program was organized as part of the National Sports Day 2026 celebrations by Mera Yuva Bharat, My Bharat. It was conducted across the country with participation of youth at two colleges in every district across states and union territories. Nearly 300 Indian tourists are among thousands who are reportedly missing after a flash flood swept through parts of the Nepal-Tibet border. Nepal Foreign Minister Kanal today said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Meanwhile, Nepal police today said the death toll rose to 162 in the flash flood on the Bhotekoshi River that wreaked havoc across three districts yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday, and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhotekoshi in Timore, a border town in Rasuwa district, due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे रवली। और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:12:10। राइट, तो नमस्ते, हेलो, आदाब। आपका जर्नी हम कंटिन्यू रखते हैं बट एक अपडेट के बाद, सो स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। एंड वेल, आज है वर्ल्ड लेक डे। जो ये क्वाइट वाटर्स होते हैं ना, वो हमारे वर्ल्ड को मूव करते रहते हैं। और कभी आपने फील किया है कि हाउ पीसफुल अ लेक कैन फील, यू नो, जब आप उस पानी के बाद खड़े होते हैं, एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, या अपनी रिफ्लेक्शन को हम पानी में देखते हैं, और आसपास बर्ड्स का साउंड, एंड वो एक पल जहाँ पे सब कुछ थम जाता है। बट अगर हम लेक्स की बात करें तो वो, यू नो, दे आर मच मोर ब्यूटिफुल प्लेसेस टू विजिट। कहते हैं दे आर एक्चुअली द लाइफ लाइन्स फॉर पीपल, वर्ल्ड लाइफ एंड प्लानट। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई वी हैव वर्ल्ड लेक डे। ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 27th of August को। द यूनाइटेड नेशंस ने इसे ऑफिशियली डिजिग्नेट किया है इस दिन को December 2024 में, और इसकी पहली ऑब्जर्वेंस हुआ था 2050 में। मतलब पिछले साल जो है ये इस दिन को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। सो वी आर इन टू द सेकेंड ईयर ऑफ ऑब्जर्विंग अ लेक डे। तो इस दिन पर थोड़ा अटेंशन जो है हमें इस क्वाइट जाइंट्स ऑफ नेचर को देना बनता ही है ना। सोचिए कि हम कितना डिपेंड करते हैं फ्रेश वाटर पे, क्योंकि लेक्स जो है हमें पानी पीने के लिए प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, इन सब के लिए लेक्स हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, राइट? साथ में दे सपोर्ट फिश, बर्ड्स, प्लांट्स एंड काउंटलेस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। और साथ ही में वो हेल्प करते हैं हमें फ्लड वाटर को ऑब्जर्व करने में, स्टोर कार्बन एंड इन्फ्लुएंस लोकल क्लाइमेट। तो इस चीज़ के बारे में कि वो लेक्स के बारे में, जैसे कि हमने कहा, थोड़ी रोशनी डालनी बनती ही है आज के दिन खास तौर पे, तो इसके बारे में बात होगी बट अगले गीत के बाद। स्टे ट्यून टू FM रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ RJ रावली।

0: रेनबो 101.9।
1: और हम बात कर रहे हैं लेक्स के बारे में, क्योंकि 27th ऑफ अगस्त को थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लेक डे। तो जैसे मैंने कहा कि लेक्स जो है काफ़ी पानी जो है हमारे ड्रिंकिंग को हो जाए या एग्रीकल्चर हो जाए या इंडस्ट्री के लिए जो है वाटर प्रोवाइड करता है, और साथ ही में फिश बर्ड्स हो जाए, प्लांट्स हो जाए और ऐसे ही बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ को ही उतना ही सपोर्ट करते हैं। और इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस देर आर मोर देन 117 मिलियन लेक्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कवर करता है नियरली 4% ऑफ प्लैनेट्स लैंड सरफेस। एंड लेक्स कंटेन करते हैं 90% ऑफ वर्ल्ड्स अनफ्रोजन सरफेस फ्रेश वाटर, एंड दैट्स क्वाइट इनक्रेडिबल इजंट इट। क्योंकि हम नो अक्सर लेक को देखते हैं तो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की तरह, बट उसके नीचे रहता है वो काम सरफेस जो है एक एंटायर इकोसिस्टम, जहाँ पे एक फार्मर डिपेंड करता है ऑन वाटर फॉर क्रॉप्स, एक फिशिंग कम्युनिटी जो है पानी पे निर्भर होता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए एक लेक सिंपली एक एसेंशियल

सोर्स ऑफ वाटर है. सो व्हेन वी प्रोटेक्ट अ लेक वी आर एंड जस्ट प्रोटेक्टिंग वाटर, क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं पीपल को, उन सारे लाइवलीहुड्स को और नेचर को. बट अनफॉर्चुनेटली लेक्स अराउंड द वर्ल्ड जो है आर फेसिंग ग्रोइंग प्रेशर. वेल, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, एक्सेसिव वाटर यूज़ और क्लाइमेट चेंज जो है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहे हैं लेक के इकोसिस्टम्स को. और फिर वहाँ पे आती है एक और चीज़ जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और यूनाइटेड नेशन ने ये बताया है दैट फ्रेश वाटर स्पीसीज जो हैं डिक्लाइन हो गई हैं 85% ओवर द पास्ट 50 ईयर्स. और ये नंबर जो है हमें सच में सोचने पे मजबूर करता है, बिकॉज व्हेन अ लेक बिकम्स पोल्यूटेड और अनहेल्थी, इट्स नॉट जस्ट अ वाटर दैट सफ़र्स, क्योंकि उसके साथ जो डिपेंड करते हैं नो बर्ड्स हो जाए या फिश हो जाए या प्लांट्स हो जाए, इवेंचुअली जो कम्युनिटीज़ इन लेक्स पे डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती ही हैं उन्हें.

वेलकम बैक। अभी हम आपको ले चलते हैं खेल खेलो इंडिया डायलॉग के, यहाँ पे जहाँ पे इवेंट हो रहा है। तो हमारी आरजे कीर्ति जो है एकदम तैयार है अपनी अगली अपडेट को लेकर, तो चलिए उनकी आवाज़ सुनते हैं। हेलो, जैसे ये इवेंट हमने देखा है कि यंगस्टर्स को इनक्रेज किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे डिग्नेटरीज जो आए हैं उनकी लाइफ स्टोरी से हमें प्रेरणा मिल रही है, और जो बच्चे आए हैं वो उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो हमारी आरजे जो कीर्ति है वहाँ पे लाइव है, तो जानते हैं उनकी यहाँ से कि क्या चल रहा है। हेलो,

आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विद मी आरजे रवली ऑन एफएम रेनबो 101.9। और हम बात कर रहे थे वर्ल्ड लेक डे के बारे में, कैसे जो है एक्सेसिव पोल्यूशन, वाटर यूज़ और क्लाइमेट चेंज से लेक के इकोसिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, राइट। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि हमें साइंटिस्ट या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है हेल्प करने के लिए, क्योंकि कई बार प्रोटेक्टिंग अ लेक बिगिंस विद समथिंग इनक्रेडिबली सिंपल, जहाँ पे हमें यू नो गारबेज हमें उसमें नहीं फेंकना है, या उस एरिया के अराउंड स्पेशली उसे हमें डंपिंग ग्राउंड की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पानी को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है और कोई भी क्लीन अप इनिशिएटिव जो होती हैं उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग अ लेक, रिमेंबर दैट लीव only footprints, not plastic bottles, or no, not try to litter around that area. Protect that area at least. Yeah, aap plant kar sakte ho, protecting the vegetation around water bodies can also help support healthier ecosystem. So World Lake Day jo hai ultimately अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और लोगों को इनक्रेज करने के लिए बना गया है, जिससे कि यू नो कैसे हम लेक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कंजर्व या रिस्टोर और सस्टेनेबली हम मैनेज कर सकते हैं लेक्स को या उनके इकोसिस्टम को बरकरार रखने की।

0: जैसे कि कहा है कि स्मार्टफोन्स आने से पहले वो कौन सी एक चीज़ है जो आप आज मिस करते हो? उनमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, राइट? कि हम शायद रेडियो ज़्यादा सुनते थे, है ना, कि तब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होके रेडियो सुनने के लिए एकदम तैयार होता था. और जैसे अभी सर ने कहा है कि टेलीग्राम्स लिखा करते थे कोई संदेश पहुंचाना हो, या हम चिट्ठियाँ लिखते थे, बट उस चिट्ठियों का इंतज़ार, रिप्लाई का इंतज़ार हमें काफ़ी वक्त करना पड़ता था. हेलो,
1: राधे राधे, सुख चैन से रहना है तो राधे राधे कहना है।
0: जी सर, नमस्कार. आपका नाम?
1: मुरली बात कर रहा हूँ,
0: जी
1: कैसे
0: सर,
1: हैं रवली जी आप?
0: मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं.
1: मैं भी ठीक हूँ। अभी ये स्मार्टफोन आने से पहले तो
0: जी सर.
1: घर घर के जैसा रहता था। अगर दूसरे रूम में अगर हमारा मम्मी पापा रहे तो मुरली कहाँ पे है? हाँ माँ यहाँ पे हूँ,
0: जी
1: बस ये अठाले वो अठाले, मतलब ऐसा अच्छा प्रेम के जैसा, मतलब एक साथ एक लोग एक जगह रहते थे, एक के दूसरे बारे में दूसरों को पता रहता था।
0: जी
1: और क्या है, अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो वोचर भरने के लिए जाता था और बैंक का एटमॉस्फेयर फील करते थे। चेक पे अगर साइन वगैरह गलत हो गए तो फिर वापस साइन करके सही तरीके से विड्रॉल कर लेते थे। ये सब मिस हो रहे हैं रावली जी। वही नहीं, अब क्या हो गया, फेसबुक में 500 जने दोस्ता हैं मगर बगल में एक भी नहीं है।
0: जी सर, सर ज़्यादा सर वक्त हम ऑनलाइन हो गए हैं.
1: ऑनलाइन हो गए सो है। और एक क्या है, अगर कुछ सब्जी वगैरह खरीदना अपन जाते थे, अपन फील करते थे कि टमाटर कैसा है, आलू कैसा है, बैंगन कैसा है, प्याज
0: जी
1: कैसा है, सब देख के अपन ला लेते थे। आज क्या क्रिटिक्स पढ़ के, क्या ब्लिंकिट में बुक करो या स्विगी में बुक करो या उसमें बुक करो या इसमें बुक करो।
0: राइट. तो
1: अगर
0: ये
1: खाने
0: चीज़ें
1: की
0: आप मिस
1: जगह
0: कर
1: भी
0: रहे हो.
1: ये सब आ गए सो है रावली जी। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, हमारा लाइफ को ही मिस कर रहे हैं हम, और हमारा हमारा बगल में जो हमारा बच्चे हैं उनको भी मिस कर रहे हैं कि सामने है मगर वो अपने साथ नहीं है, ये फील हो रहा है। ये मिस हो रहे हैं हम
0: जी
1: इस
0: सर,
1: स्मार्टफोन पर
0: तो
1: जैसे रहते
0: कोशिश
1: थे।
0: करते हैं कि शायद वो पुरानी आदतें अगर हम थोड़ा इन्वॉल्व कर सके आजकल की जिंदगी
1: अच्छा
0: में.
1: अच्छा होता है अगर आगे, मतलब पुराना दिन से अगर आ गए
0: जी
1: तो बहुत ही अच्छा है। हो सके
0: राइट.
1: तो एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए रवली जी, मुकेश जी का,
0: हाँ
1: और सत्यम शिवम सुंदर में
0: जी सर,
1: चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी, अगर वो तो हो सके तो वो, या नहीं तो आनंद में कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
0: राइट
1: हो
0: सर.
1: सके तो दो। हैव ए ग्रेट डे, थैंक
0: थैंक
1: यू
0: यू,
1: वेरी
0: थैंक
1: मच।
0: यू फॉर कॉलिंग.
2: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: गुड आफ्टरनून मैम.
2: मैं मेहरबीन बात कर रही हूँ बाबानगर से.
0: जी जी मैम. तो
2: रेडियो था पहले, रेडियो से सब मालूम होते थे, पूरा बंद था एरिया, सब बंद था. किले में हमारे भाई थे, वो तेरे
0: जी
2: भाई रेडियो पे इत्तला मिली के उनका इंतकाल हो गया बोल के फैक्स भी जाते थे हमारे अम्मी भाई को. पहले पर अच्छा था, अभी भी अच्छा है. अब बच्ची बाहर है ना, हमें फोन जरूरी है. लिमिट में
0: जी
2: देख लिया तो बहुत अच्छे काम हो रही. लिमिट से बाहर नहीं जाना, हर वक्त अपनी इबादत में उसमें रहते हुए थोड़ा टाइम पास कर लेना.
0: जी,
2: वो भी दौर अच्छा था, ये भी दौर
0: दौर
2: अच्छा
0: अच्छा,
2: है, आने वाला दौर भी अच्छा रहेगा.
0: यही उम्मीद
2: अपन
0: करते
2: अच्छे तो
0: हैं.
2: सब अच्छे. थैंक
0: बिल्कुल बिल्कुल.
2: यू.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग. राइट, तो समय हो गया है स्टूडियो में 1:17 और 50 सेकेंड. जैसे ही मैंने आपसे पूछा है कि स्मार्टफोन्स आने से पहले वो कौन सी एक चीज़ है जो हम या आप मिस करते हो, तो जैसे कहा अभी हमारे कॉलर ने ही कहा कि रेडियो सुनना, या लेटर्स लिखना, या फोटोग्राफ्स. जब हम खींचते थे उस रील को प्रिंट करके आने में थोड़ा वक्त लगता था, तब हम उस रील की अहमियत को जानते थे. ज़्यादा फोटोज़ नहीं खींच सकते थे, रील ख़त्म हो जाता था, या हम अपने फ़ोटोज़ कैसे आई ही नहीं देख सकते थे, या लैंडलाइन पर बातें करना, फ्रेंड्स के साथ बिना फ़ोन के मिलना, राइट, और घर के बाहर गेम्स खेलना, जो आजकल अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो थोड़ी कम हो गई है, राइट. पर फिर भी अगर हम ये चीज़ें कह सकते हैं थोड़ा बहुत छूट गई है, अगर वो हम इंक्लूड कर ले, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये चीज़ें भी अगर हम फिर से अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर ले, तो मे बी शायद वी कैन लिव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट. हेलो,
3: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब लवली जी. जी,
0: गुड आफ्टरनून सर.
3: सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा सलाम आदाब. अल्लाह सभी को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे. शेर खान बोल रहा हूँ,
0: जी
3: अरवल नगर से.
0: जी सर.

0: मैडम मैं यही कहना चाहूंगा छोटे से अंदाज में कि पहले जो थी नेचुरल माहौल था, जो पहले अपनापन था, और भला ही किसी को तालीम कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो,
1: जी
0: आज्ञाकारी थे, अपने माँ बाप का सुनने वाले थे, अपने भाई बहनों का सुनने वाले और एक दूसरे को वक्त देने वाले थे. ज्यादा कुछ नहीं था, टीवी वगैरह देखते थे, उसके पहले तो वो भी नहीं था, और दूसरा कुछ करते थे, खेलते कूदते थे, यानी एक मेहनत मशक्कत वाली अच्छी नेचुरल जिंदगी थी.
1: जी.
0: अब थोड़ा आलसीपन हो गया है. जब आज सहूलतें तो बहुत कुछ है स्मार्टफोन आने से, और जो भी ये टेक्नोलॉजी और तरक्की कर रही है, सहूलतें बहुत है, नुकसान भी है, हर सिक्के के दो पहलू है. तो इसके हम सहूलतें इसका फायदा उठाने से ज्यादा नुकसान ज्यादा उठा रहे हैं.
1: अच्छा.
0: वो अपने पे डिपेंड करता है, लेकिन आज वो समझ नहीं है, वो अखलाक नहीं है. आज बच्चे भी है तो बस स्मार्टफोन में डूबे हुए हैं. कौन को ये रिश्ता क्या है, ये कौन है, ये क्या है, उतनी मालूमात नहीं, उतनी अहमियत नहीं. यानी ये कहूंगा कि सहूलतें तो बहुत बढ़ गई है. अबे खाना आज भी है, लेकिन उस वक्त का जो दौर था वो लज्जतदार था. आज जो है तो इसमें बहुत कुछ सहूलत है, लेकिन वो लज्जत नहीं रही, वो टेस्ट नहीं रहा.
1: राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वॉइस.
0: हम ये कर रहे हैं, मतलब वो एहसास नहीं है, एक दूसरे को वक्त देते थे, जो वो वक्त मिस हो रहा है, वक्त नहीं है हमारे पास, फिजूल में वक्त लग गया है हमारा. तो फायदे तो बहुत कुछ है, हम फायदे छोड़ के ज्यादा नुकसानों में डूब गए हैं. एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे, एक दूसरे की अहमियत नहीं समझ रहे. ये बहुत कुछ सारी बातें हैं. ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको जो पहला वक्त था उसका एहसास भी हमारे अंदर होना चाहिए, वो भी रहना चाहिए, और इसका सही फायदा उठाना चाहिए.
1: राइट सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
0: ओके मैडम, शुक्रिया.
1: हेलो, एक और कॉलर से बात करने की कोशिश करते हैं. हेलो.
2: हेलो, हाय रवि जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ. हाँ
2: से
1: सॉरी, आपका नाम?
2: बस हम ये मिस कर रहे हैं कि पहले फ्रेंड्स से जब भी फ्री रहते थे एक दूसरे के घर जाते थे.
1: जी जी.
2: अब कुछ अब ऐसी बात नहीं रही, अब कुछ भी काम भी रहा तो वो सब व्हाट्सएप पर हो जा रहा. और ना स्कूल लाइफ सारी हैंडराइटिंग ठीक करने में गुजर गई.
1: जी जी.
2: स्कूल लाइफ सारी हैंडराइटिंग ठीक करने में गुजर गई, और अब जिंदगी कीबोर्ड पर चल रही है.
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल.
2: अब कुछ भी लिखना है तो सब हर चीज फोन पर ही हो रहा.
1: हाँ हाँ.
2: पेपर पेन यूज ही नहीं हो रहा.
1: जी जी,
2: ठीक है.
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग. तो बाय. तो जैसे इन्होंने कहा है कि नो स्कूल में हम हैंड राइटिंग को सुधारने की यू नो कितनी कोशिश किया करते थे, और फिर टीचर्स का भी यू नो कीन इंटरेस्ट होता था कि सब बच्चों की हैंड राइटिंग जो है अच्छी हो, तो उस पर हमने बहुत काम किया है. बट अगर हम फिर टाइमलाइन थोड़ा बहुत आगे जाके अगर हमने देख लिया, तो बहुत सारा अभी आजकल का हमारा काम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है. सो हम लिखने की बजाय बहुत कुछ टाइप करते हैं. तो और कई बार अक्सर हो गया है कि हमने कब आखिरी बार पेंसिल या पेन पकड़ा था कुछ लिखने के लिए. राइट, हम शायद महीनों हो जाते हैं विदाउट टचिंग द पेन एटलीस्ट, क्योंकि हम फ़ोन पे भी जो है हमें टाइप ही करना है, या काम पे भी हो तो हम कीबोर्ड के साथ ही होते हैं. तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होते हैं. और जैसे फ्रेंड्स हो तो हम लैंडलाइन भी जब पहले होता था तो हम वेट किया करते थे कि नो घर पे होंगे या नहीं होंगे, तो या अगर हमने एक दिन स्कूल मिस कर लिया तो कैसे हमारे फ्रेंड से हमें पता चलेगा कि आज स्कूल में क्या सिलेबस कवर हुआ है. तो उसके लिए भी लैंडलाइंस का इस्तेमाल हमने किया है कि ये जानने के लिए आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया एंड कैसे उसे हम कवर कर सकते थे. तो बहुत सारी ऐसे मेमोरीज़ हैं जो स्मार्टफोन्स आने से पहले हमारी ज़िंदगी में रही हैं. जैसे हम घर पे बहुत सारे ऐसे इंडोर गेम्स खेलते थे नेबर्स के साथ, है ना, एकदम किसी के घर पे जाके आराम से पूरी पलटन ऐसे बैठ के गेम खेलते, बोर्ड गेम्स खेलना या कुछ हो, तो उसमें एक अलग ही सुकून मिलता था. राइट, तो शायद ही वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट समवेयर इन आर हार्ट्स वो उस समय को हम ज़रूर जो है मिस करते. और इसीलिए कई बार जो है वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स जो है हमारी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं, सो वी रियली वांट टू गो बैक इन टाइम. राइट, बट ऐसा हो नहीं पाता है. तो बस उन यादों के ज़रिए ही शायद हमें हमारी ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ाना है. तो फ़िलहाल आइए एक और गाना सुनते हैं, उससे पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. तो स्टे ट्यून्ड फॉर FM Rainbow 101.9. मैं हूँ आपके साथ.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back. You're listening to FM Rainbow 101.9. This is RJ Ravli. So on the occasion of National Sports Day, 27th of August 2026, in this special program, Khelo India Dialogue, Khel Ki Baat, PM Modi Ke Saath, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji interacted with young budding athletes. The Prime Minister connected with their aspirations, ideas and experiences while sharing his vision for a stronger sporting ecosystem and a Viksit Bharat. So let us now listen to Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Ji.
2: Namaskar. Aap sabhi ne itne shandar tarike se Khelo India Samvad ka ye karyakram ayojit kiya hai. मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माय भारत के लाखों लाख वॉलेंटियर्स का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीट्स और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। आप सबको पता है साथियों, दो दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को उनको याद करने का भी अवसर होता है। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई थी और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। वो टूर भारत और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स रिलेशंस के 100 वर्ष पूरे होने का आधार है। कुछ दिन पहले मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया था, तब भी मैंने न्यूजीलैंड में उन्हें याद किया था। मेजर ध्यानचंद जी ने जिन रिश्तों की नींव रखी थी, आज भारत उन रिश्तों की समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा है। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।

साथियों, जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती, उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिस स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत होती है, यानी दुनिया उस खिलाड़ी के नाम से उस शहर या राज्य को पहचानने लगता है। और जब ऐसी अनेक सफलताओं को लेकर कोई क्षेत्र ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर चमकता है तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में देश के जिन सैकड़ों जिलों के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, हर जिले में दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर चमकने की ताकत है। इस ताकत को समझते हुए ही हमें इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती, यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम कम्पीट ही नहीं करते। और दशकों से ऐसा ही चला रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी। और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। अब जैसे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक के लिए डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके। और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका

है। साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है।
और ये

स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट, खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है, और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही उसके पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा हूं। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है, नाम जानते हैं आप, शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने दो दो बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं बहुत गर्व महसूस करता हूं। सुमित अंतिल हो, नितेश कुमार हो, और अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे जंडू कुमार, ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं। ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। हम सभी फौजा सिंह जी के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा की आयु में फौजा सिंह जी का निधन हुआ है। खेल के प्रति प्यार हो, फिटनेस हो, तो ये कैसे जीवन पर्यंत चलता है, फौजा सिंह जी इसकी मिसाल थे। उनका जीवन इस बात की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे स्पोर्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपस में जुड़े हुए हैं। साथियों, स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो असली खिलाड़ी होते हैं उनमें ड्रग्स, नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है। आज जब नशे की इतनी बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है, तो स्पोर्ट्स इसमें भी बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत में स्पोर्ट्स एक बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पर उभरा है। समाज में स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। आज आप देखिए, हमारे देश में लोग ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहे हैं, 5K

0: 10K रेसिस दौड़ रहे हैं, यार दोस्त मिलकर हाई रॉक्स जैसे चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं, कोई पहली बार शीर्षासन करने की खुशी मना रहा है तो कोई दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर पीकल बॉल और बैडमिंटन खेल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो इसमें बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। चेंज ये कि स्पोर्ट्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। अगर पढ़ाई और कैरियर का टाइम टेबल बन रहा है तो दिन भर के रूटीन में स्पोर्ट्स को भी जगह मिल रही है। और यही चेंज है, यही परिवर्तन है जिसके कारण भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर भरोसा भी बढ़ रहा है। साथियों, देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवीय से जुड़े, जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को को-करिकुलर नहीं जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूं, खेल के मैदान में हो या समाज के बीच, आपकी भागीदारी ही भारत की शक्ति है। आपको खेल से प्यार है तो इससे जुड़ने के अनेक माध्यम बन रहे हैं। अब नए नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रेनिंग और कोचिंग के तरीके बदल गए हैं, खेलों के आयोजन की, उसकी प्रतिस्पर्धा की, उसकी विधाओं की जरूरतें बदल गई है। इक्विपमेंट डिजाइन है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स, ऐसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। आपको ये अवसर छोड़ना नहीं है, इसलिए इस संवाद में खुलकर अपने आइडियाज सामने रखिए। युवा शक्ति की ये भागीदारी विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। वेल स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:55, यानी कि आज का हमारा सफ़र जो है यहीं का समाप्त होता है। तो आपसे मुलाकात जो है फिर होगी अगले शो में। तब तक के लिए सुनते रहिए एफ एम रेनबो 101.9। दिस इज़ आरजे रवि साइनिंग ऑफ।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की। और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम है बहुत खास, संदेश टू सोल्जर्स।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स इस शो में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि। अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज, जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं, लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूं, सूत्रधार हूं। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है, जो भी आप महसूस करते हैं जरूर लिखिएगा। युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ा ही दिखते थे, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है। कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है। और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहां से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं।

संदेश टू सोल्जर्स जिस कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत

तत्पर एक सजग एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं। अब जो पूरा देश जो बहने हैं अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं। किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास,

किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है। आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ। शांताचारा बाडिगर कोकानूर, एम आई राइट? ओके, भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा। शब्दों पे क्षमा चाहूंगी, लेकिन दावानागरे से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है।

जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरूला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स, और सैल्यूट करते हैं उनको. यशवंत जी लिखते हैं अपने अपने भाव के साथ, और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं. जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं. इसलिए आज आपकी आवाज उन तक पहुंचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है. मेरा नाम है शैली भाषांजलि. सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं.

चलता है फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूंगी जो भाई के लौटने का इंतजार करती हैं। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतजार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूंगी जिनकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं। और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर जिला, चंपावत, उत्तराखंड से इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर यह भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेस स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल्जर से। बहुत ही खास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेज उसका यहाँ है वो आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की। और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, कि इन्होंने यश सिंधे ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही इज सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स। ये हमारा शो है, सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले। बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में, कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इछलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का, जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

आज उर्दू प्रोग्राम नए रंग में आपसे बात कर सकेंगे। हरफिदा बिंदा, तहरीर और पेशकश होगी सैयद मंजूर अहमद की। इसके बाद आपसे बात कर सकेंगे।

0: लीजिए समाप्त कीजिए। हर्फ तहमीदा, तहरीर और पेशकश है सैयद मंजूर अहमद की।
1: सामईन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो जदीद दौर में एक समाजी हकीकत बनता जा रहा है, और वो है सैंडविच जनरेशन। आप सोच रहे होंगे कि सैंडविच जनरेशन से क्या मुराद है। ये कोई खाने पीने की इस्तिलाह नहीं, बल्कि एक ऐसी नस्ल को कहा जाता है जो एक तरफ अपने बूढ़े वालदेन की देखभाल कर रही होती है और दूसरी तरफ अपनी औलाद की परवरिश व तालीम तरबियत की ज़िम्मेदारी अदा कर रही होती है। यानी ये नस्ल दो नस्लों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रही होती है। ये मामला उन लोगों के लिए संगीन होता है जो 30 ता 50 साल की उम्र के दरमियान होते हैं। उन पर माली, जज्बाती और वक्त का बोझ बढ़ जाता है। ये लोग वालदेन की देखभाल, सेहत, दवाइयाँ और इनकी रोज़मर्रा के काम पूरे करने का बंदोबस्त भी करते हैं, और साथ ही बच्चों की तालीम, तरबियत और इनके मुस्तकबिल के लिए भी ये फ़िक्रमंद रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनको कुछ मसाइल दरपेश होते हैं, जैसे दो नस्लों की ज़िम्मेदारी की वजह से ज़हनी तनाव में इजाफा देखा जाता है। दो तरफ़ा अखराजात, जैसे अपने बुज़ुर्गों की सेहत और बच्चों की तालीम एक साथ अदा करने होते हैं। खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाना, जिससे इनकी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी और ज़ाती सेहत पर ये असरअंदाज होता है। अक्सर औक़ात ऐसे अफराद समाजी ज़िंदगी में कम नज़र आते हैं और चाहकर भी वक्त नहीं दे पाते। अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना हो या हम ख्याल लोगों के साथ उठना बैठना हो, इनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। अब आइए इन तमाम मसाइल के हल की तरफ रोशनी डालते हैं। ऐसे अफराद जब इस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए कि बच्चों और वालदेन के साथ खुले दिल से बात करें, ताकि ये एक दूसरे की ज़रूरियात को समझ सकें। माशरे में ऐसे अफराद की फलाही इदारों की जानिब से रहनुमाई होनी चाहिए, ऐसे सहूलियात पैदा करना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी में ये दोनों ज़िम्मेदारियाँ, अपने वालदेन और औलाद की परवरिश, आसानी से हो सके और ये ज़िम्मेदारियाँ निभाने में आसानी हो सके। ज़हनी और जिस्मानी सेहत की अहमियत को इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सैंडविच जनरेशन कोई शिकायत करने वाली नस्ल नहीं, बल्कि ये एक सब्र के साथ हालात का मुकाबला करने वाली नस्ल है। ये वो लोग हैं जो अपनी खुशियों को छोड़कर अपने प्यारों की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, इनके लिए सहूलियात पैदा करना चाहिए और इन्हें भी ज़िंदगी गुजारने का भरपूर मौका देना चाहिए, और सबसे बढ़कर इनके हौसले की दाद देनी चाहिए। अक्सर लोग इन दो नस्लों के दरमियान उलझ जाते हैं, मगर इनके दो नस्लों के लिए ढाल बन जाना ये अजमत की निशानी है।
0: सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश थी सैयद मंजूर अहमद की। सामईन लीजिए आगे बढ़ते हैं, समाप्त कीजिए मुशायरा। शोरा होंगे समी मोहम्मद हसैनी, सरदार सलीम, शकील अनवर रज़ाक़ी और वहीद पाशा खात्री। लीजिए समाप्त कीजिए।

0: दिल के जितने हैं सभी दाग दिखाऊं तुमको, दिल के जितने हैं सभी दाग दिखाऊं तुमको, मेरी सांसों में उतर जाओ हवाओं की तरह। दिल के जितने हैं सभी दाग दिखाऊं तुमको।
1: वाह वाह वाह।

0: तुम निगाहों से शरबत
1: अच्छा
0: पिलाओ जरा,
1: वाह वाह
0: तुम
1: वाह वाह
0: निगाहों से शरबत पिलाओ जरा, तुम
1: वाह
0: तसव्वुर में तुम सामने मेरे आकर,
1: अच्छा
0: तसव्वुर में तुम
1: सामने मेरे
0: सामने
1: आकर
0: मेरे आकर, नई एक गजल फिर लिखाओ
1: अच्छा
0: जरा, तुम जहां पर
1: वाह वाह
0: अंधेरों
1: वाह वाह वाह
0: का
1: वाह
0: कब्जा बहुत
1: अच्छा
0: है,
1: बहुत
0: जहां पर
1: यस
0: अंधेरों का
1: कब्जा बहुत
0: कब्जा बहुत है, वहां चांद सूरज उगाओ जरा,
1: वाह वाह
0: तुम वहां
1: चांद
0: चांद
1: सूरज
0: सूरज
1: उगाओ जरा।
0: उगाओ जरा, तुम। गजल का आखिरी शेर पेश करता हूं।
1: अच्छा
0: जहां भी है नफरत के

0: लुटाओ जरा तुम वहां पर उजाले, लुटाओ जरा तुम ख्यालों में तश्कील अनवर के आकर, ख्यालों में तश्कील अनवर के आकर, हुनर शायरी का सिखाओ जरा तुम, हुनर शायरी का सिखाओ जरा।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: शुक्रिया बहुत।
1: तसव्वुर माशूक, तसव्वुर उस्ताद, सारी चीजें इस बदल में शामिल थी, माशाल्लाह। मुबारकबाद तस्कीर अनवर रज़ाकी साहब। जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। अब आइए मैं जनाब सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब समी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें।
2: मोहतरम सामईन, अपनी बात एक खता से शुरू करूँगा, इसका पस मंजर क्या है वो आप समझ सकेंगे। अर्ज किया है कि इस जहां में जो तेरी इज्जत थी, इस जहां में जो तेरी इज्जत थी, तेरे किरदार की बदौलत,
1: अरे वाह वाह वाह,
2: इस जहां में जो तेरी इज्जत थी,
3: तेरे किरदार की
2: बदौलत थी,
3: बहुत अच्छे।
2: तू तो खादिम था सारी दुनिया का, तू तो खादिम था सारी दुनिया का, तेरी इस वास्ते हुकूमत थी।
1: बहुत खूब,
2: आपके आपकी तफन्नुन तबा के लिए ये थोड़ा सा गैर अदबी समझा जाता है, एक मतलब मुलाजा कीजिए। चढ़ के टीलों पे मेरे खत को नहीं पाते हैं, चढ़ के टीलों पे मेरे खत को नहीं पाते हैं, बौने जब नाप ने कामत को मेरी आते हैं, बौने जब नाप ने कामत को मेरी आते हैं। चांद तक थूक पहुंचता नहीं पर छीटे, चांद तक थूक पहुंचता ही नहीं पर छीटे, थूकने वाले के ही चेहरे पे गिर जाते हैं। ये शेर है कि नाम के पीछे पड़ी रहती है बदनामी क्यों, नाम के पीछे पड़ी रहती है बदनामी क्यों, रोशनी होते ही साये भी चले आते हैं।
1: वाह वाह वाह,
2: नाम के पीछे पड़ी रहती है बदनामी क्यों, रोशनी होते ही साये भी, रोशनी होती ही होते ही साये भी चले आते हैं। एक मुकम्मल गजल
1: इरशाद इरशाद,
2: मतला है कि बल्कि बहुत से मतले हैं इसमें।
1: अच्छा,
2: दरिया में मोहब्बत के नदी डूब गई है,
1: वाह,
2: दरिया में मोहब्बत के नदी डूब गई है, क्या इश्क की मंजिल का पता ढूंढ रही है।
1: अच्छा, अरे वाह वाह वाह,
2: आंखों में नमी है नहीं होठों पे हंसी है, आंखों में नमी है नहीं होठों पे हंसी है, इस बार कहानी में कोई बात नहीं है, इस बार कहानी में कोई बात नहीं है। तकदीर तो हाथों की लकीरों में फंसी है।
1: अच्छा।

बर्तरी का कोई एहसास न पाया जाए, उससे मिलना ही अगर है तो तरद्दुद कैसा, उससे मिलना ही अगर है।

0: ख्वाहिश हुई तो क्या होगा, मैं रो पड़ा तो पिघल जाएगी खुदी मेरी, मैं रो पड़ा तो पिघल जाएगी खुदी मेरी, नमक के शहर में बारिश हुई तो क्या होगा।
1: वाह वाह वाह, फिर बढ़िया सर, फिर बढ़िया।
0: मैं रो पड़ा तो पिघल जाएगी खुदी मेरी, नमक के शहर में बारिश हुई तो क्या होगा। अर्ज करता हूँ कि खूने दिल आंसुओं में ढलता है, खूने दिल आंसुओं में ढलता है, दर्द का जायका बदलता है। खूने दिल आंसुओं में ढलता है, दर्द का जायका बदलता है। ये देखिए, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है, दर्द का जायका बदलता है तभी तो खुशी में सौंधापन, है तभी तो खुशी में सौंधापन, इसमें गम का नमक भी ढलता है।
2: अरे क्या कहने,
0: है तभी तो खुशी में सौंधापन, इसमें गम का नमक भी ढलता है। तुझसे जलता है अक्स भी तेरा, शेर मुलाजा, तुझसे जलता है अक्स भी तेरा, आईने से धुआं निकलता है। तुझसे जलता है अक्स भी तेरा, आईने से धुआं निकलता है। तू चले तो लगे मुझे ऐसे, तू चले तो लगे मुझे ऐसे, चांद जैसे जमीन पे चलता है। तू चले तो लगे मुझे ऐसे, चांद जैसे जमीन पे चलता है। तन पिघलता है धूप में और मन, तन पिघलता है धूप में और मन, जुल्फ की छाँव में पिघलता है। तन पिघलता है धूप, तन पिघलता है धूप में और मन, जुल्फ की छाँव में पिघलता है। झूठ के पाँव ही नहीं होते, झूठ के पाँव ही नहीं होते, सच के पैरों से झूठ चलता है।
2: अरे क्या कहने, क्या कहने,
0: झूठ के पाँव ही नहीं होते, सच के पैरों से झूठ चलता है। एड़ियां तो रगड़नी पड़ती हैं, एड़ियां तो रगड़नी पड़ती हैं, वरना चश्मा कहाँ निकलता है। एड़ियां तो रगड़नी पड़ती हैं, वरना चश्मा कहाँ निकलता है। शेयर करता हूँ कि मुफलिसी का नहीं है डर हमको, मुफलिसी का नहीं है डर हमको, जिंदगी से उधार चलता है। मुफलिसी का नहीं है डर हमको, जिंदगी से उधार चलता है। और जो लगाता है सबको सीने से, वही सीने पे सबके सलता है।
2: क्या कहने भाई, क्या कहने।
0: जो लगाता है सबको सीने से, वही सीने पे सबके सलता है। मखता है कि तू हकीकत में आदमी है सलीम, तू हकीकत में आदमी है सलीम, रोज गिरता है रोज संभलता है, रोज गिरता है और संभलता है। एक गजल की और, ताजा, बिल्कुल ताजा है, कि न कर नदी के किनारों की सैर, आंखें खोल।
2: अच्छा,
0: इसकी जमीन मुलाहिजा कीजिएगा, कि न कर नदी के किनारों की सैर, आंखें खोल, जो तैरना है समंदर में तैर, आंखें खोल, जो तैरना है समंदर में तैर, आंखें खोल, यही तरीका है दुनिया को देखने का, यही तरीका है दुनिया को देखने का, अब के अपनी आंखों को खोले बगैर आंखें खोल।
2: अरे क्या,
0: यही तरीका है दुनिया को देखने का, अब के अपनी आंखों को खोले बगैर आंखें खोल। और भाई ये भी देखना तरकीब, कि फना की रेल चली आ रही है तेजी से, फना की रेल चली आ रही है तेजी से, फंसा है पटरी में ख्वाहिश का पैर, आंखें खोल। फना की रेल चली आ रही है तेजी से, फंसा है पटरी में ख्वाहिश का पैर, आंखें खोल। ये रास्ता है अना के मगर मच्छों से भरा, ये रास्ता है अना के मगर मच्छों से भरा, कदम संभाल मना अपनी खैर, आंखें खोल। कदम संभाल मना अपनी खैर, आंखें खोल। और शेर है कि ये, यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत की बात होती है, यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत की बात होती है, ये मैकदा है ना माबद ना दैर, आंखें खोल। यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत की बात होती है, ये मैकदा है ना माबद ना दैर, आंखें खोल। आखिरी शेर है कि सभी को देख तू अपनाइयत से मेरी तरह, सभी को देख तू अपनाइयत से मेरी तरह, लगेंगे गैर भी तुझको ना गैर, आंखें खोल। سبھی کو دیکھ تو اپنائیت سے میری طرح، لگیں گے غیر بھی

0: तुझको ना गैर आंखें
1: अरे
0: खोल,
1: वाह बहुत
0: और
1: अच्छा,
0: मकता है कि ये उम्र कम है बहुत प्यार बांटने के लिए।
1: अरे वाह
0: ये
1: उम्र
0: उम्र
1: कम
0: कम
1: है।
0: है बहुत प्यार बांटने के लिए, न रख सलीम किसी से भी बैर, आंखें खोल।
1: बड़ा खूबसूरत तजद्दुद है वो
0: जी
1: गैर
0: साहब
1: का,
0: जी,
1: गजब
0: फना
1: की रेल चल रही।
0: की रेल चली आ रही है तेजी से,
1: हाय हाय हाय हाय
0: फंसा है पटरी में ख्वाहिश का
1: हाय
0: पैर,
1: हाय
0: आंखें
1: हाय वाह वाह
0: खोल।
1: क्या
0: यही
1: बात,
0: तरीका है दुनिया को देखने का अब,
1: अरे वाह
0: कि अपनी आंखों को खोले बगैर आंखें
1: आंखें
0: खोल।
1: खोल।
0: एक दो तीन शेर और पेश किए देता हूँ, दो शेर सुन लीजिएगा क्योंकि वक्त है हमारे पास। कि बिछड़ गए हो तो क्यों याद आए जाते हो,
1: बिछड़ गए हो तो क्यों
0: बिछड़
1: याद आए
0: गए हो
1: जाते
0: तो
1: हो,
0: क्यों याद आए जाते हो,
1: हाय
0: कि एक बुझे हुए दिल को जलाए जाते हो,
1: क्या कहने,
0: कि एक बुझे हुए दिल को
1: जलाए
0: जलाए
1: जाते
0: जाते
1: हो।
0: हो। अंधेरे कमरे में सोने की मुझको आदत है,
1: क्या बात,
0: अंधेरे
1: अंधेरे
0: कमरे में सोने
1: सोने
0: की
1: की
0: मुझको
1: मुझको आदत
0: आदत है,
1: है।
0: और एक तुम हो के बस जगमगाए जाते हो।
1: अरे
0: और एक
1: बहुत
0: तुम हो
1: बहुत,
0: के
1: अरे फिर पढ़िए,
0: बस
1: वाह वाह
0: अंधेरे
1: वाह
0: कमरे में सोने की मुझको,
1: वाह,
0: बिछड़ गए हो तो क्यों याद आए
1: सही बात
0: जाते
1: सही है,
0: हो,
1: फिर
0: कि एक बुझे हुए दिल को जलाए जाते
1: वाह क्या
0: हो।
1: कहने,
0: अंधेरे कमरे में सोने की मुझको
1: मुझको
0: आदत
1: आदत है
0: है, और एक तुम हो के बस
1: बनते
0: जगमगाए
1: बनाए
0: जाते हो।
1: वाह
0: मख्ता
1: क्या
0: पेश कर देता हूँ।
1: कहने।
0: कहाँ से लाते हो चिंगारियाँ सलीम इतनी,
1: अच्छा
0: कहाँ से लाते हो चिंगारियाँ सलीम इतनी, के लफ्ज लफ्ज को शोला बनाए जाते
1: अरे
0: हो,
1: अरे वाह वाह
0: के
1: वाह
0: लफ्ज
1: वाह
0: लफ्ज
1: वाह,
0: को शोला बनाए
1: लफ्ज
0: जाते
1: लफ्ज
0: हो।
1: को शोला बनाए, वाह
0: आपकी
1: वाह
0: खूबसूरत
1: वाह
0: समातों का शुक्रगुजार हूँ मैं, ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से तमाम सामईन का और तमाम शुराए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस महफिल शेर की बर्खास्तगी का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस स्टूडियो सी घड़ी में रात के 10:03 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे थे मुशायरा, जिसके अंदर आप समाप्त कर रहे थे कलाम जनाब समी मोहम्मद हुसैनी, जनाब सरदार सलीम, जनाब शकील अनवर रज़ाकी और जनाब वहीद पाशा कादरी।
3: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे हैं। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पर गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
2: सामाइन लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का अगला प्रोग्राम, जो कि फिल्मी नगमों पर मबनी है, गीत सुरे लगाते जा। और साथ में हम बात करेंगे वर्ल्ड लेक डे पर।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामीन अभी आप समात कर रहे थे नगमा मुकेश की आवाज़ में, और आप समात कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेक डे पर। सामीन, कायनात में पानी जिंदगी की सबसे बड़ी अलामत है। ज़मीन का तवाज़न बरकरार रखने और इंसान की बका के लिए कुदरत ने मुख्तलिफ ज़राए पैदा किए। इसमें एक मुनफरिद और अहम लेक्स हैं। झीलें न सिर्फ कुर्रे अर्ज़ के हुस्न में इजाफा करती है बल्कि हमारे माहौल का एक लाजमी हिस्सा है। इकोसिस्टम निज़ाम झीलों की ऐसी माहौलियाती, इकतसादी और हयातियाती अहमियत को उजागर करने और इनके गिरते हुए मायार को बचाने के लिए हर साल 27 अगस्त को अक्वामे मुत्तहिदा के ताउन से दुनिया भर में आलमी योम झील मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानों को यह याद दिलाना है कि अगर ये कुदरती झीलें ख़त्म हो गई तो हमारा पूरा माहौलियाती तवाज़न बिगड़ जाएगा। सामईन, हम इसी तरह बात करते रहेंगे। लीजिए, समझ कीजिए ये नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सीगड़ी में 10:15 हो चुके हैं। सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे नगमा, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। सामईन, आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों का गुलदस्ता प्रोग्राम गीत सुरेले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेक डे पर। सामईन, झीलें ज़मीन पर मीठे पानी का एक बहुत बड़ा ज़खीरा होती है। ये ना सिर्फ इंसानों बल्कि हज़ारों अकसाम के चरिंद, परिंद, मछलियों और आबी पौधों का मिस्किन है। झीलों

गिर्द माहौल हयातियाती तनों से मालामाल होता है। हिजरत करने वाले लाखों मौसमी परिंदे सरमा या गर्मा में तवील फासला तय करके इन झीलों का रुख करते हैं और यहाँ अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। सामईन हम इसी तरह बात करते रहेंगे, लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे थे ये नगमा फिल्म लता, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और आशा जी की। और सामिन, आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे वर्ल्ड लेक डे पर। माहौलियाती नुक्ते नज़र से झीलें ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने में मदद करती है। ये सैलाब के ख़तरात को कम करती है क्योंकि बारिशों का इजाफी पानी इन झीलों में जमा हो जाता है। इसके अलावा झीलें अपने करीबी इलाकों में दर्जे हरारत को मुतदल रखने और मुकामी आबो हवा को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। झीलें सिर्फ खूबसूरती का ज़रिया नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों का रोज़गार और खुराक इनसे वाबस्ता है। झीलों की अफजाइश नस्ल के ज़रिए ये मुकामी आबादियों को सस्ती और गजाइत से भरपूर खुराक फराहम करती है। ज़िरात के शोबे में झीलों का पानी फसलों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सी झीलें ऐसी हैं जहां पीने का साफ पानी फिल्टर करके शहरों को फराहम किया जाता है। सियाहत के लिहाज से भी झीलें

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो सी घड़ी में 10:30 हो चुके हैं। सामयिन अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले का तेजा, और साथ में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेक डे पर। सामयिन, हैदराबाद दक्कन का इलाका जोग्राफियाई तौर पर एक पहाड़ पर वाक़ है जहाँ दरियाओं की कमी थी। यहाँ का इन्हिसार ज़्यादातर मानसून की बारिशों पर था। जब कुतुब शाही दौर के बाद आसफ जाही सल्तनत का आगाज़ हुआ तो शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और खुश्क साली का मुकाबला करने निज़ाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज से निमटने के लिए निज़ाम हुकुमरानों ने कुदरती नशेब व फराज का फ़ायदा उठाते हुए झीले और तालाब तामीर करने का एक वसी मंसूबा शुरू किया। छठे निज़ाम मीर महबूब अली खां के दौर में हैदराबाद ने झीलों की तामीर की सिमत बड़ी पेशरफ देखी। उनके दौर में शहर के इर्द गिर्द मौजूद पुरानी झीलों की तोसी की गई और नई झीलें बनाई गई। निज़ाम दक्कन ने रिवायती चैन लिंक टैंक सिस्टम को फ़रोग दिया। इस निज़ाम के तहत जब एक झील पानी से भर जाती है

तो इसका इजाफी पानी खुद ब खुद दूसरी फिर तीसरी झील में मुंतकिल हो जाता है। इससे पानी ज़ाया नहीं होता और पूरे शहर का जेर ज़मीन का पानी लेवल बरकरार रहता है। सामिन इसी तरह हम बातें करते रहेंगे, लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन आप समात कर रहे हैं चंद फिल्मी नगमे और साथ में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेक डे पर। सामईन, हैदराबाद की तारीख में सबसे बड़ा मोड़ 1908 में आया जब मूसा नदी में आने वाले होलनाक सैलाब ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इस तबाही ने निज़ाम हुकूमत को मजबूर किया कि वो पानी के इंतज़ाम को हमेशा के लिए महफूज बनाए। मीर महबूब अली ख़ान ने इस वक्त के सबसे मशहूर सिविल इंजीनियर श्री मोक्षाकुंडम विश्वेश्वरैया को हैदराबाद मदद किया। इन्होंने शहर को मुस्तकबिल के सैलाबों से बचाने और पानी की मुस्तकिल फराहमी के लिए झीलों का एक मास्टर प्लान तैयार किया। लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन, आलमी योम झील हमें यह पैगाम देता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की बका झीलों और पानी के दिगर कुदरती ज़राए के तहफ़ से मशरूत है। झीलें ज़मीन की आँखें हैं, अगर ये आलूदगी और खुश्की के बास अंधी हो गई तो खूबसूरती और ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। हमें सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन झीलों के तहफ़ का अहद करना होगा। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली नस्लों को एक साफ सुथरा, सरसब्ज और पानी से भरपूर माहौल दे। सामेन लीजिए, समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो सी घड़ी में 10:50 होने ही वाले हैं। समय न, जैसा कि हम जानते हैं कि कल हम रक्षाबंधन बनाने वाले हैं, उसके मुतालिक चंद बातें समाप्त कीजिए। सामिन, रक्षाबंधन बरसगीर हिंदू पाक बिलखसूस हिंदुस्तान में मनाया जाने वाला एक इंतहाई अहम, खूबसूरत और रिवायती त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहन के दरमियान गैर मशरूत मोहब्बत, गहरे ताल्लुक, एतमाद, एहतराम और एक दूसरे के तहफ्फुज के अहद की अकासी करता है। रक्षाबंधन को आम तौर पर राखी का त्यौहार कहा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर खूबसूरत राखी बांधती है और इसकी खुशहाली, सेहत और कामयाबी की दुआ करती है। भाई अपने बहन की हिफाजत, इज्जत और हर मुश्किल वक्त में इसका साथ देने का वादा करता है। इस तरह ये त्यौहार खानदानी मोहब्बत को मजबूत बनाने के साथ साथ रिश्तों की अहमियत का भी एहसास दिलाता है। लफ्ज रक्षा के माने तहफ्फुज़ और बंधन के माने धागे के हैं। इस तरह रक्षाबंधन का माना तहफ्फुज़ रिश्ता है। ये साल हिंदू मत के कैलेंडर के मुताबिक श्रावण के महीने की पूर्णिमा यानी पूरे चांद की रात को मनाया जाता है, जो आम तौर पर अंग्रेजी कैलेंडर के माह अगस्त में आता है। ये दिन खानदान को एकजा करने और रिश्तों में मिठास घोलने का एक बेहतरीन जरिया है।

आकाशवाणी की टीम की जानिब से रक्षाबंधन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सामिन लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का आखिरी प्रोग्राम पयाम-ए-शब, पेशकश नदीम अख्तर सैदी करेंगे।

0: शिकायतें भी बहुत हैं, हिकायतें भी बहुत, मज़ा तो जब है कि यारों के रूबरू कहिए। जिंदगी में इख्तलाफात और शिकवे हर शय का, हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं, मगर असल किरदार ये है कि इंसान दूसरों की गैर मौजूदगी में इनकी बुराइयां न करे। अगर किसी से शिकायत है तो इज्जत, मोहब्बत और हिकमत के साथ उसी के सामने बयान करें। पीठ पीछे की जाने वाली बातें दिलों में फासले पैदा करती हैं, जबकि रूबरू की जाने वाली गुफ्तगू बहुत से गलत फहमियों का खात्मा करती है। सच्चा दोस्त वो है जो सामने इसलाह करे, ना कि पीछे गइबत। इख्तलाफ को दुश्मनी ना बनाए, मुकालमे का रास्ता इख्तियार करें। ताल्लुकात एतमाद से मजबूत होते हैं, चुगलखोरी और बदगोई से नहीं। जो बात सामने कहने की हिम्मत ना हो, उसे दूसरों के सामने दोहराने से भी गुरेज करना चाहिए। रिश्तों की हिफाजत खामोश नाराजगी से नहीं, बल्कि एहतराम के साथ की गई साफ गोई से होती है। शिकायत अगर दिल में है तो उसे महफिलों में नहीं, मुतालिका शख्स के सामने मोहब्बत और हिकमत से बयान कीजिए।
1: अभी आप समाप्त कर रहे थे पयाम शब, तहरीर और पेशकश थी नदीम अख्तर जहरी की। समय न स्टूडियो सी घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हात में आप समाप्त कर सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से।

0: साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779

9851316807 और +9779813261717 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं स्टूडियो में. आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद निखिल.
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100. Defense Minister Rajnath Singh says defense production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे बंद हुआ. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन चार गुना होकर 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई.
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment.

0: for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 539 अंक यानी 0.70% गिरकर 76,934 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 117 अंक यानी 0.48% लुढ़ककर 24,091 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले आज कारोबार की शुरुआत में बाजार में तेजी दिखी, जिसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ईरान तथा ओमान के बीच कूटनीतिक बातचीत रहे। हालांकि जल्द ही दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई और नीचे आकर कारोबार करने लगे। सेंसेक्स के मंथली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी के कारण बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे ज्यादातर समय दोनों सूचकांक एक सीमित दायरे में ही रहे। बाद में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के दौरान गिरावट आई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note for the second consecutive session today. Sensex declined by 539 points, 0.70% to close at 76,934. Nifty lost 117 points, 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. Earlier, the markets opened on a positive note, supported by easing crude oil prices and hopes of a diplomatic breakthrough between Iran and Oman. However, both the stock market indices soon gave up the early gains and slipped into negative territory. The indices remained largely range-bound through most of the session as selling pressure persisted due to Sensex monthly futures and options expiry. In the subsequent closing auction session, the indices extended their losses.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एचडीएफसी बैंक 2.1%, एनबीसी में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% नीचे आ गए। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1.7%, आईसीआईसीआई बैंक 0.9% और टेक महिंद्रा में 0.8% की तेजी दर्ज हुई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, a mid-small private bank shed 2.6%, PSU banks lost 2.1% and BankEx dropped 1.7%. In contrast, capital goods gained 0.6%, telecommunications added 0.5% and healthcare rose by 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative. As shares of 2,557 companies declined, 1,779 companies advanced and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 14 पैसे गिरकर 95.55 पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: पुनीत, मार्केट आज सुबह एक अच्छी शुरुआत के साथ था, कारोबार कर रहा था, लेकिन बाद में वो अच्छी शुरुआत सस्टेन नहीं कर पाया। क्या कारण रहे ऐसे और क्या लगता है कि करेक्शन आसपास या करेक्शन हो चुका है?
2: निखिल, देखिए, जहां तक करेक्शन का सवाल है, बाजारों में अभी एक इनहेरेंट एक सुस्ती कहूंगा, वीकनेस तो मैं शब्द शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बाजार सुस्त हैं। और खास कारण यह है उस बाजारों का सुस्ती का कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे आज आपने पढ़ा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, एचडीएफसी बैंक या जो बड़े बड़े बैंक के शेयर्स थे, वहां हमने थोड़ी गिरावट देखी। और यहां पर काफी बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टेड हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड हैं और उनको रिटर्न्स नहीं आ रहे। और ये माहौल पिछले करीब एक या दो वर्ष से हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, वहां पर निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं आ रहा है। उस कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वहां पर कुछ मुनाफा आ रहा है, कुछ सिलेक्टिव हम तेजी मंदी देख रहे हैं वहां पर, और ज्यादातर पैसा भी अब मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि बाजार मिले जुले हैं विद एन अंडरलाइंग स्लो मार्केट मूवमेंट। आज के बाजार खास तौर से मैं का जो आपने देखा उतार चढ़ाव के शुरुआती दौर में बाजार तेज थे, फिर बाद में गिरावट आई, उसका कारण जो आपने कहा कि आज जो एक मंथली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, वो उसका कुछ इफेक्ट रहा। लास्ट क्लोजिंग सेशन में, लास्ट के 15 मिनट में ज्यादा हमने गिरावट देखी, तो वो कोई खास बात नहीं है। पर ओवरऑल मैं कहूंगा कि मार्केट जो है वो अभी थोड़ी सुस्त है।
0: पुनीत, व्हाट इज द इंपैक्ट of the derivative segment, because there are going to be contracts which are bought into for the next month. We have the FN expiry for this month. What happens in the next month in the derivative segment, which is having an impact on the cash market right now? When we talk about mid cap, small cap, Sensex, Nifty, these all cash segments. So any selling pressure here means that there is something in the derivative contracts for the next month which is really motivating.

0: saw minor gains. Capital goods went up by 0.6%, telecom 0.5%, and healthcare 0.4%. But specifically, capital goods in the context of the gross domestic product, the real economy as we call it, where because now there's a projection, because the announcement will be made on the 31st of August, what the first quarter GDP growth is going to be from April to the June period. How would you rate the capital goods sector right now? Because it's a very important component in our net exports.
1: So Arjun, you're right. See, traditionally in India, stock markets have been driven mostly by the services sector. So therefore, you find telecom companies doing much better in India, banking sector stocks, healthcare stocks. So all these stocks were doing traditionally much better. However, I think in the last few months, while these so-called large caps, whether in IT services or in terms of healthcare, we found that these are banking, they were not giving much returns to investors, but government has put a lot of emphasis on manufacturing sector. And you will see a lot of push for manufacturing because in manufacturing, we have new technologies coming up. We are expanding our defense production. We are expanding our space exploration. So industry is getting a lot of push from there. And markets are responding to that. So capital goods, which supplies equipment, machinery for manufacturing sector, we are seeing a lot of interesting developments there. And also, it is also linked to construction to some extent. At the same time, there are other sectors which are now emerging as defensive sectors for investors as compared to FMCGs of the world. No, earlier, if you wanted defensive investments, you went to FMCG now or IT. But today, if you want defensive investments, you actually go to manufacturing. You look at capital goods. So this is the changing nature of
0: the
1: market.
0: PMI manufacturing index has also gone up well above 50, 55 in fact.
1: Absolutely. So above 50, it denotes expansion of activity. So surprisingly in India, which was a mostly, and even today, it's a mostly services driven economy, we find the manufacturing is making a headway. And I think markets are also kind of reflecting that change of mood.
0: So we'll have the industrial production data, which will come out tomorrow as well. Let's move on to the Asian and the European markets.
2: बिल्कुल एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया कोस्पी आज 1.5% की बढ़त और जापान का निक्केई 225 0.2% नीचे आकर बंद हुआ. इस बीच बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी अगस्त महीने की बैठक में बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 3% कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक में 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान पहले के 2.6% से बढ़ाकर 3.3% कर दिया है, जबकि सीपीआई महंगाई का अनुमान 2.7% पर ही बनाए रखा. पूरी तेज दक्षिण कोरिया में जिस तरह की हम ये बदलाव देख रहे हैं, जो ब्याज दर में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है, इसके क्या मायने और ऐसी स्थिति में, हालांकि अभी लग रहा है कि साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है.
1: हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया का मार्केट तो बिल्कुल एक आउटलायर मार्केट रहा है स्टॉक मार्केट्स में पिछले दो वर्षों में. इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है. ऑन एनी गिवन डे हम देखते हैं 5% बढ़ जाता है, कभी 5%, बहुत वोलेटाइल स्टॉक इंडेक्स है. पर फिर भी वो एक सिस्टम को या एक एक एक, एक दिशा बता रहा है कि इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ जा रही है. साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हमने देखा कि ये जो इकोनॉमीज थी यहाँ पर AI driven, जो मैन्युफैक्चरिंग थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, वो ज्यादातर लिस्टेड है वहां पर. और वहां पर काफी ज्यादा वहां पर निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत बड़े पैमाने पर आई, और इसी वजह से हमने उतार चढ़ाव देखा. साउथ कोरिया को देखें तो मैं ये कहूंगा कि आज जो उन्होंने ब्याज दर बढ़ाए हैं, हालांकि उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन स्टेबल रखा है
2: जी.
1: और अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाया है. पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेकर प्रेशर बना रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर, और सेंट्रल बैंक्स को आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. हालांकि नोबडी सेज दैट, अमेरिका में भी आप देखेंगे कि वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे. पर मुझे लगता है अगले वर्ष प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे वो ज्यादा है कंपेयर टू की इंटरेस्ट रेट कट होगा.
2: तो ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है.
1: नहीं नहीं, ऐसा देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो एक तरह से हम कहते हैं कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या इन्फ्लेशन होता है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं. पर स्टॉक मार्केट के लिए वो वैल्यूएशन के लिए अच्छी चीज नहीं है. तो हमें लगता है कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है.
0: In more news, Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector. The defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees, and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defence exports worth

0: 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He said India was not only manufacturing weapons domestically, but was also developing the capability to maintain, overhaul and...
1: हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. हालांकि nobody says that. अमेरिका में भी आप देखेंगे कि वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे. पर मुझे लगता है अगले वर्ष प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे वो ज्यादा है कंपेयर टू की इंटरेस्ट रेट कट होगा.
2: तो ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है.
1: नहीं नहीं ऐसा देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो एक तरह से हम कहते हैं कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या इन्फ्लेशन होता है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं. पर स्टॉक मार्केट के लिए वो वैल्यूएशन के लिए अच्छी चीज नहीं है. तो हमें लगता है कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है.
0: In more news, Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector. The defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defence exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He said India was not only manufacturing weapons domestically, but was also developing the capability to maintain, overhaul and

0: करोड़ खाते खोले गए, इनसे लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी समावेशी पहल है, जो सभी भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार प्रति खाता 5,356 रुपए जमा हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 78% खाते अर्धशहरी या ग्रामीण इलाकों में खोले गए, जिनमें से लगभग 56% भागीदारी महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लाखों लोगों का सशक्तिकरण किया है। श्री चौधरी ने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं ने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव किया है। पुनीत, जब इस योजना का शुभारंभ हुआ था, एक ऐसी सोच रखी गई थी कि हर एक भारतीय के पास उसका बैंक खाता हो, चाहे वो किसी भी तबके का खाता हो। आज जब हम ये देखते हैं कि 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
1: देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि प्रैक्टिकली हर भारतीय के पास आज एक बैंक अकाउंट है। उसका कई आपके सीधा बेनिफिट दिखते हैं, दो बेनिफिट आपको बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की यूपीआई की आज ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिकॉज ऑफ जनधन योजना की वजह से, क्योंकि गांव गांव में, घर घर में आज सबके पास मोबाइल फोन है और इंटीग्रेटेड है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनधन पूरी स्कीम की रही है कि जो हम गांव गांव में हर जगह ये हम डिजिटल इकोनॉमी आई है, वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज हम बात करते हैं कि कोई आप लीकेज नहीं होगी सिस्टम में और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई, ये जनधन योजना का ही एक स्वरूप है जो उसकी डेवलपमेंट से आया है, और मुझे लगता है इसने ट्रांसफॉर्म किया है भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को।
0: ओके,
2: लेट्स नाउ मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है और ईरान आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी आज ईरान पहुंच रहे हैं। वे ईरानी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगता नहीं कि कोई जल्दी हमें एक ठोस निर्णय तक पहुंचने का मौका मिलेगा?
1: देखिए, जो ईरान और यूएस की जो वॉर है वो एक अलग ही रूप अब ले चुकी है, वो इकोनॉमिक वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिजिकल वॉर में बॉम्ब गिरना और हवाई जहाज की लड़ाई वो नहीं है, अब एक इकोनॉमिक फॉर्म एक लेती है, और इकोनॉमिक वॉर जो है वो थोड़ा लंबा चलती है और स्ट्रेटेजिक वॉर होती है, तो मुझे लगता है वो नया रूप एक ले रही है ये वॉर अब।
2: In more news, global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $82.50 per barrel when reports last came in. We were talking about what's happening in West Asia between, in the Gulf area where, the shipping takes place and, oil prices are escalating as a result of what Iran is doing and what the U.S. is doing. But Ukraine and the Russia conflict earlier had spiked the prices of Urals oil. Now that's moderated. Is that a sign of oil prices actually coming down or going up?
1: So it is basically a sign of better supply of oil in the world, because earlier most of the oil was going either through Gulf or through the Suez Canal route. Now we have this Arctic route also opening up, and therefore the Urals prices have come down. Primarily, I would say this is a stabilization of the oil market. Oil market, I think, is moving beyond the US-Iran conflict now. That they are of course settling at a higher price, but I think the oil market is stabilizing to a large extent.
0: पुनीत, आपको लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है, इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
1: देखिए, दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को, जो ऑयल

0: बट आई थिंक द ऑयल मार्केट इज स्टेबिलाइजिंग टू लार्ज एक्सटेंट.
1: पुनीत, आपको लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है, इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
0: देखिए, दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को जो ऑयल के और गैस के, ओमान है, कतर है, ये बेसिकली गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं. और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सप्लाईज तो आ रही है, लेकिन गैस की जो सप्लाईज है वो अफेक्टेड है. तो वो दोनों देश अपनी अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं. तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जो है अब पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, उसका रूप बदल रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बदल रहे हैं. तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट.
1: जी, आगे बढ़ते हैं. सराफा बाजार में सोना 1.9% नीचे आकर 158,386 रुपए प्रति दस्कान पर था और चांदी 1.9% लुढ़क कर 239,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. अब पुनीत जी, एक निवेशक के नजरिए से अगर इन दोनों चीजों को देखें तो आपको क्या लगता है कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या संभावनाएं नजर आती हैं?
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है चांदी और सिल्वर में काफी जंप आया है. और यदि यूएस डॉलर, जैसे ऐसा लगता है हमें कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो सोना चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं. तो डेफिनेटली यूएस डॉलर की कमजोरी का कारण के वजह से हम देख रहे हैं तेजी बन रही है. और जो फैक्टर्स हैं भी यूएस डॉलर वीकनेस के, वो थोड़े फैक्टर है. अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर चांसेस कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तब गोल्ड और चांदी में आप गिरावट देखेंगे. तो यूएस इंटरेस्ट रेट पे नजर रखिए, वहां से हमको संकेत मिलेगा कि ट्रेंड क्या होगा.
2: ऑल्सो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इनटू गोल्ड वंस अगेन. Why is this trend picking up now? Because silver went up and there was a lot of buying by Indian farmers because of the post-harvest income being diverted towards this investment. What are the central banks doing now?
0: So central banks, as like I said, if the dollar index suffers, then immediately we say buying in precious metals. So that is what is happening. They're hedging against a dollar depreciation.
1: पुनीत, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद निखिल.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 24,100. Defense Minister Rajnath Singh says defense production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years. Then global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
1: Namaskar.
2: Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887818 और +9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा में समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा

0: देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डोमियन फर्नांडो शनिवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
1: Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. On the international stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 23 08 8718, +91 11 23 08 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 99 68 29 1988 can be contacted. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the Lindh tributary of the Bhote Koshi and first at Timur near Nepal's border with China at Rasuwagadi. The National Disaster Response Force, NDRF, has said the devastating flash floods in Nepal have so

रात के आंगन में, रात के आंगन में चांद आज कुछ ज्यादा निखरा है, जैसे संगीत सुनने को वह भी हमारे साथ ठहरा है। हवा की लहरों पर कोई मीठी तरंग चली है और दूर कहीं से गीत की खुशबू से मिली है। इस पहर ना कोई जल्दी है, ना किसी मंजिल की तलाश, बस सुरों का साथ है और दिल के लिए कुछ खास। तो आइए एक एक गीत के साथ रात को नया रंग देते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा के साथ मैं हूं जयती। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में पहला गीत फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए और आवाज है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। बरसात की रातों का अपना एक सुंदर सा संगीत होता है। बूंदे छत पर गिरती हैं और भीतर कोई पुरानी बात जाग जाती है। सड़कें भींगी हो तो शहर कुछ देर के लिए अपना चेहरा बदल देता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे चमकती हर बूंद किसी अधूरी कविता की जैसी लगने लगती है। ऐसी रात में चाय की खुशबू भी थोड़ी सी ज्यादा अपनी लगने लगती है, और रेडियो रेडियो जैसे किसी अनजान कमरे में बैठा अपना कोई इंसान हो। आप जहां भी हैं, अगर आपके पास आसपास ऐसा ही कुछ हो रहा है तो कुछ देर ठहरिए, बैठिए। बारिश हो रही हो तो बारिश का मजा लीजिए, क्योंकि बारिश अपने साथ यादों का मौसम भी लेकर आती है, और कभी कभी ये मौसम हमें उन बातों तक ले जाती है जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। ये बारिश जो है ये हमें उन बातों को याद करने का मौका देती है, और मौसम बहुत सारी कहानियों को दोहराने का वक्त देता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और गीत और फिर आगे बढ़ेंगे। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम है कभी कभी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी

0: अरुणाचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

ये जो दिन के बाद रात आती है ना, तो रात को लेकर यूं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, पर रात दिन की थकती हुई कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि ये जो रात है ये हमें हमसे मिलने का सबसे सुंदर समय देती है। जब शहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की आवाज कुछ साफ सुनाई देने लगती है। किसी को नींद की तलाश है, किसी को किसी अपने की याद की, किसी के पास बहुत कुछ कहने को है मगर सुनने वाला कोई नहीं है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बिल्कुल खाली है। और ये जो रेडियो है ना, रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये अनजान लोगों के बीच भी एक संबंध बना देता है। तो इस रात हम आपसे यही कहेंगे कि अपने लिए कुछ पल अपने पास रखिए और कल की चिंता कल पर छोड़िए। आज की रात बस खुद के साथ बैठकर खुद के साथ जीने की कोशिश करिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत जो है वो फिल्म का नाम है कुदरत, आवाज है लता मंगेशकर की।

ये जो दिल है ना, इसमें इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर आप दिल की बातों को शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे तो आप इसे शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि एहसास को शब्दों में बांधना ये बहुत मुश्किल काम है। जो दिल की बातें होती हैं उनको शब्दों में बांधना हो तो वे उतरती हैं किसी गीत की धुन में, किसी खुशबू में लौटती हैं, या अचानक किसी पुराने नाम के साथ कविता बनकर लौट आती हैं। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये थोड़े अजीब से होते हैं। इसे जितना हम छुपाने की, बचाने की कोशिश करते हैं, ये मन के अंदर उतने ही गहरे होते जाते हैं। और रात जब आती है तो ये जज्बात जो हैं ये फिर से जाग उठते हैं, क्योंकि रात उन्हें आवाज देती है। इसलिए शायद देर रात सुने गए गीत, पढ़े गई कोई किताब, कोई शब्द सीधे दिल पर दस्तक देते हैं। दिन हमें व्यस्त रखता है और रात हमारी संवेदनाओं को जगा कर रखती है। और आज अगर आपका दिल भी आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसे रोकिए मत, उसे बांधने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हर भाव का, हर एहसास का, हर जज्बात का एक अर्थ होता है। बस उसे समझने के लिए इस रात में थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठिए और दिल पर जो आवाज दस्तक दे रही है उस दस्तक को सुनने और समझने की कोशिश करिए। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सिलसिला।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं जिस गीत के साथ। आवाज है आशा भोसले की और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है कश्मीर की गली। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887 और +9111230887 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801026117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात के आंचल में आज सुरों की महक घुली है, दूर किसी मंदिर की घंटी जैसे हवा मिली है। चांदनी आंगन में चांदी के फूल खिला रही है और हर मधुर धुन कोई नई तस्वीर बना रही है। ये पहर उन सुनने वालों के नाम जो अभी जाग रहे हैं, जो अपने पसंदीदा गीतों के संग कुछ पल खुद से मांग रहे हैं। तो अपनी धड़कनों को संगीत की लय पर धड़कने दीजिए और आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। सावन की पहली फुहार ने जब देरी को छुआ, मैंने पायल उतार कर आंगन में रख दी कि आज मेरे कदमों की आहट नहीं बूंदों का संगीत सुना जाए। अमलतास के पास भीगी हुई धूप पर एक पीला फूल गिरा था, मैंने उसे उठाकर अपनी चोटी में सजा लिया। ऋतु ने जैसे बिना कहे मेरा श्रृंगार कर दिया। ताल के किनारे कमल की पंखुड़ियां खुली, कच्ची मिट्टी ने सोंधी महक से भरकर मेरी सांसों को छुआ और भीतर कोई पुराना राग अचानक जाग उठा। ना कोई संदेश आया, ना किसी पथ पर पदचाप सुनाई दी, फिर भी आज मन ने किसी के अभाव को अपनी नियति नहीं माना। मैंने काजल लगाया, हरी चूड़ियां पहनी, माथे पर छोटी सी बिंदी रखी और आईने से कहा, स्त्री का श्रृंगार किसी की प्रतीक्षा नहीं, उसकी अपनी प्रसन्नता भी हो सकती है। घन गिरते रहे पर्वतों के पार, नदियां अपने तटों से बातें करती रहीं, कहीं मोर ने पंख खोले, कहीं बेलों ने पुराने वृक्षों को आलिंगन दिया। मैंने देखा, प्रकृति किसी के लिए अपने रंग नहीं बचाती, जिसे जहां खिलना होता है वहीं खिलती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है रोटी।

हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा, जा।

और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गाइड और आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं, जयती।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां और आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से 1,500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कमकुई अशांग इलाके के IT रोड पर कल सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सेनापति जिले में लोगों ने बंद का ऐलान किया। इस घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शाम को राजधानी इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हमले की समीक्षा की गई और सुरक्षा अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मणिपुर में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन AMSU ने इम्फाल में 61वां हंगर मार्चर्स डे या चकलाम खोंगपत मनाया। ये दिन उन 4 छात्र नेताओं की याद मनाया जाता है जिनकी मौत 27 अगस्त 1965 को मणिपुर में चावल की कथित कृत्रिम कमी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हो गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। त्योहारियों के मौसम से पहले 25,000 से ज्यादा चांदी के ज्वेलर्स BIS के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। मौसम विभाग ने

तुम्हारी बांसुरी में ऐसा क्या है, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा क्या है जो हर बार मुझे मेरी ही खामोशी सुनाती है। वो मुस्कुराया, शायद उसमें स्वर नहीं तुम्हारा नाम बसता है, शायद उसमें स्वर नहीं तुम्हारा नाम बसता है। और अगर मैं तुमसे रूठ जाऊं, तो उसने कहा, तो बांसुरी मौन रहेगी, क्योंकि प्रेम में स्वर भी उसी के होते हैं जिससे हृदय जुड़ा होता है। वो धीरे से बोली, फिर मुझे कभी मत पुकारना। वो मुस्कुराया, पुकारूंगा नहीं, तुम्हें अपने भीतर रखूंगा, जहां से कोई विरह भी तुम्हें मुझसे छीन न सके, जहां से कोई विरह भी तुम्हें मुझसे छीन न सके। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

अकेले होना और अकेलापन, ये दोनों ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, पर ये दोनों एक बात नहीं है। कभी कभी अकेली रात इंसान को अपने सबसे करीब लेकर आती है। कोई साथ ना हो, फिर भी मन में बहुत से चेहरे रहते हैं।

कितनी आवाजें, कितनी बातें और कितनी अधूरी मुलाकातें। हम अक्सर भीड़ में खुद को खो देते हैं और रात हमें फिर अपने पास बुलाती है। और अगर आज आप अकेले हैं तो इसे अपनी कमी मत समझिए। शायद ये वक्त होता है जब हम खुद से बातें कर सकते हैं, खुद को सुन सकते हैं और अपने दिल से सवाल भी कर सकते हैं कि सचमुच हमारा दिल हमसे क्या चाहता है। कभी कभी सबसे जरूरी जवाब जो होता है ना, वो दुनिया हमें नहीं देती है, हमें हमारा अपना मन देता है। जब हम उस मन के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और उसकी आवाज को पूरी तन्मयता से सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा।

ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बॉबी।

रात के आंचल में आज सुरों की महक घुली है, दूर किसी मंदिर की घंटी जैसे हवा से मिली है। चांदनी आंगन में चांदी के फूल खिला रही है और हर मधुर धुन कोई नई तस्वीर बना रही है। ये पहर है उन सभी लोगों के नाम जो अभी जाग रहे हैं, जो अपने पसंदीदा गीतों के संग कुछ पल मांग रहे हैं, तो अपनी धड़कनों को संगीत के लय पर छोड़ दीजिए। आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है अंदाज, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मेरा वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसे ही किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। पर याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज है लता मंगेशकर की। नमस्कार।

0: भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अचानक आई इस बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1,500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। BIS ने बताया कि 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चांदी के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करता है। मानक ब्यूरो ने चांदी आभूषण ग्राहकों को सलाह दी है कि वे BIS हॉलमार्क देखें और BIS केयर ऐप के जरिए HUID को जांचें। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2रा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज की रात इस पहर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ हमराही के इस सफर को लेकर। और हमराही के इस सफर के खास बात है कि हम इसमें आपको सुनवाते हैं हिट फिल्मी ड्यूएट्स। तो चलिए उन सुनहरे गीतों में खो जाने के लिए जिन्हें गाया कुछ युगल स्वरों ने, जिन्हें जो है चरित्र दिया कुछ युगल अदाकारों ने। और कहें तो तुम मिले हम बने और ये सफर तय हुआ।

फिल्म तेरे घर के सामने से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में, एस डी बर्मन साहब का सुरीला संगीत। संसार कहता है प्रेम पागल कर देता है, किंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे समझदार कर दिया। अब मैं तुम्हें खोजने नहीं निकलता किसी गली किसी पते किसी शहर में, क्योंकि समझ गया हूँ जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म नया दौर से। किनारा किनारे पे बेसुध पड़ा था, समंदर का जी भी भरा लग रहा था। हमें इश्क बस इस सबब से हुआ था, हमारे भी हिस्से में थोड़ा खुदा था। मैं एक चांद बनकर छिपा उसके पीछे, वो सबके लिए फिर रुपहली घटा था। और जब वो दिल लेके परदेसी हो गया तो सच में बड़ा दुख हुआ था। तो सच ही कहा है किसी ने, परदेसियों से नाखियां लड़ाना। लेकिन हम जो यहाँ ये गीत सुन रहे हैं, ये फागुन फिल्म का गीत है आप सभी के लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है हमराही का।

आशा और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म मैं चुप रहूंगी से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है हमराही का। हमराही तो वही होता है जो आपके सफर को साझा कर ले, और हम भी कोशिश करते हैं कि रात का ये जो कठिन सफर है इसे हम आपसे साझा करें। और इसी बीच हमराही में हम सुनवाते हैं आपको युगल गीत। तो चलिए अगला युगल गीत जो है वो हम लेकर आ रहे हैं फिल्म सारंगा से, लता जी और रफी साहब की आवाज़ में।

मिस मैरी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, हेमंत कुमार का संगीत और बोल लिखे राजेंद्र कृष्ण ने। अगला गीत सुनवाएं उससे पहले

कुछ कह भी लेते हैं। लगा कि कल ही की बात है और बीच में बस ये रात है। तुमने सुनहरा दुपट्टा ओढ़ा था, हाथों में चूड़ियाँ, आंखों में काजल लगाया था, होठ हिले थे, कुछ कहा था तुमने। वो सरसराहट कानों में अभी जिंदा है, वही पल था और ये दिल दीवाना हुआ आपका। अगला गीत फिल्म इश्क पर जोर नहीं से आप सभी के लिए।

अब समय हो गया है कि हमरा ही कार्यक्रम से इजाजत ले ली जाए। तो इजाजत दीजिए माधुरी को, कुछ ही समय प्रसारित होंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के

0: हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। श्रीलंका ने कहा है कि वह नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरू कुमार दिसानायके ने कहा कि जरूरत की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. The death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप अरुणिमा का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूँ आज आप सभी के साथ। शुरू करते हैं इस सफ़र को और ये भी एक बात है कि हर सफ़र शुरू होता है और यही कोशिश होती है कि हर सफ़र का आगाज़ अच्छा हो, इसका अंजाम अच्छा हो। हमारा आपका जीवन बहुत ही जटिल है, पर जटिलता ही जो है इसकी सुंदरता भी है। लेकिन ये बात ज़रा देर से समझ में आती है, लेकिन आते आते आ ही जाती है।

ज़िंदगी में जो चीज़ हम सोचते हैं ना करें, न जाने क्यों वही चीज़ बार बार होती चली जाती है। जैसे उदासियों को ही लें, अगर हम चाहें कि हमें उदास नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन फिर भी उदासियाँ कहीं ना कहीं से आती हैं, हमें घेर लेती हैं, घेरती हमें परेशानियाँ हैं और परेशानियाँ हमें उदास कर जाती हैं। और ज़िंदगी क्या है? इन उदासियों से लड़ने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है, परेशानियों पर विजय पाने का नाम है।

कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि जिंदगी बाधाओं के आगे विवश होकर रह गई है, दुख आया और जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे पलों में, ऐसे क्षणों में लगता है कि अब जो होगा गलत ही होगा, पर हार के आगे जीत की सीढ़ियां शुरू होती हैं। हमें बस उन सीढ़ियों को देखना है, ढूंढना है और उन पे फिर चढ़ना है। सकारात्मकता आती जाएगी, थोड़ा समय लगता है एक पल को दूसरे पल में बदलते हुए, लेकिन ये समय कट जाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है अरुणिमा का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ।

आप सुन रहे हैं अरुणिमा। हमारे संकल्प और विकल्प लगातार बातें करते रहते हैं। छोटे बड़े कामों को पूरा करने के लिए हम हर समय कुछ ना कुछ चुन रहे हैं।

आप सुन रहे हैं अरुणिमा। हमारे संकल्प और विकल्प लगातार बातें करते रहते हैं। छोटे बड़े कामों को पूरा करने के लिए हम हर समय कुछ ना कुछ चुन रहे होते हैं, पर जैसे ही कुछ चुनते हैं उसके बाद उसी पर अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। जो बातें यात्रा में पड़ाव भर होती है हम उसे मंजिल मान लेते हैं। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं बस वही अंतिम है, उससे आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये सफ़र लंबा है और इस सफ़र में हर चीज़ अंतिम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी जाएंगी, और इसी तरह हमें जो भी घट रहा है उसके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ते जाना है।

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ही बातें हो जाती हैं और मन दुखी भी हो जाता है, पर कई बार हमें अपने मन की बात दूसरे को सिर्फ बताने भर से आराम मिल जाता है। कभी कभी दूसरों की सलाह भी राहत लेकर आती है, लेकिन ऐसे किसी स्थिति में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पूरी छानबीन करें कि हमारी बात किसी और को कहेगा कि नहीं कहेगा। कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है ना जिस पे हम पूरा विश्वास करते हैं, और बस उससे बात करने भर से हमारा मन हल्का हो जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, अपने मन को हल्का कर लिया कीजिए।

भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जीवन में सही फैसलों की बड़ी भूमिका होती है। अच्छे फैसले हमें दूसरों की नज़र में ऊंचा उठा देते हैं। अपनी बात सही साबित होने पर हमें खुशी भी बहुत मिलती है, हमारा आत्मविश्वास भी ज़्यादा हो जाता है, हम आत्मविश्वास से भर उठते हैं। पर हमेशा हमारे फैसले सही ही होंगे ऐसा तो नहीं होता ना। हम जितना अड़ते हैं उतना पीछे हटने में दिक्कत महसूस होती है, उतना ही उनके गलत होने पर हम दुखी हो उठते हैं। फिर जो बात समझनी है वो ये कि हर फैसला, जीवन मरण, हार जीत या इन सब का प्रश्न नहीं होता। इन सबको कभी भी हमेशा आखिरी फैसला नहीं बनाना चाहिए। समय के साथ थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर करना चाहिए। कभी-कभी हम सच में जीते जीते हार जाते हैं, तो स्वीकार कर लीजिए ना उसे।

0: अब यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ के आगे का सफर जो है अरुणिमा का कल शुरू होगा। आज का यहाँ का सफर यहीं तक, इजाजत दीजिए और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया।

0: जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के नागरिक शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस बीच श्रीलंका ने कहा है कि वो नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होता है। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। उधर कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 389 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,500 people missing. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. The Ministry of External

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। और आज अब ये जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम भोर सुहानी, इसमें सबसे पहले आप सभी को बधाई। आज क्योंकि खास दिन है और खास दिन है भाई बहन के प्यार का, जी हाँ, रक्षाबंधन का। ये राखी आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आए। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभ

कभी नहीं कहा मैं सबसे ऊंचा हूँ। जड़ ने कभी नहीं कहा कि मैं बेहद गहराई से आई हूँ। शक्ति होती है मौन। पेड़ कहते हैं मुझसे, गहराई भी कहती हैं जड़ें, और पवित्रता भी कहता है अन्न। पेड़ ने कभी नहीं कहा मैं सबसे ऊंचा हूँ, जड़ ने कभी नहीं कहा मैं बेहद गहराई से आई हूँ, और रोटी कभी नहीं बोलती दुनिया में क्या है मुझसे अच्छा।

अच्छी बात क्या है, जीवन में किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है, सबसे अच्छी बात है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। और हम जीवन में यही चाहेंगे कि हमें सारी अच्छी चीज़ें मिलती रहें, लेकिन उसके लिए हमें भी वही करना चाहिए जो हमें चाहिए, उसके लिए वही देना चाहिए। जी हाँ, प्यार बांटते चलो, प्यार मिलता रहेगा।

हमारी ख्वाहिशें बहुत छोटी छोटी होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ दिन से रात तक करते रहते हैं। लेकिन पता है, कभी कभी लोग बेहतर के तलाश में बेहतरीन चीज़ों को खो देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा हमारे साथ, आपके साथ न हो।